प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। अतः किसी भी कार्य से पहले इनकी वंदना और आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सच्चे दिल से इनकी वंदना करते हैं, उनकी जिंदगी हर विघ्न बाधाओं से मुक्त एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। अतः हम सबों को इनकी वंदना सच्चे दिल से करने चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इनकी वंदना करते हैं।

0: उड़ा सुबह की किरने आई है
1: बहुत अच्छे
0: खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है
1: बाबा बेटा
0: सुबह की किरने आई है खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी
1: नमस्ते
0: जय हिंद ओ पिताजी
1: जय हिंद
0: नमस्ते नमस्ते है सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

0: हमराज कार्यक्रमाच्या श्रोत्यांना नमस्कार. सुरू करूया आजची मैफिल. संवेदनांच्या जगाचा साक्षीदार गुरुदत्त यांच्या माहितीवर आधारित मजकुराचा पहिला भाग सादर आहे. अपेक्षांच्या ओझ्यामुळे गुरुदत्त यांच्या भावनांनी 1964 साली आत्मघातकी रूप घेतलं आणि एक हळुवार जीवन अचानक थांबलं हे सत्य आपल्याला माहीतच आहे. ऐकूया एक था प्यासा गुरुदत्त भाग एक.
1: वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला.
2: गुरुदत्त हिंदी फिल्मों के पहले मिस्टर परफेक्शनिस्ट, लाजवाब एक्टर, उससे भी बेहतरीन डायरेक्टर गुरुदत्त वाकई बॉलीवुड के गुरु थे. गुरुदत्त अपने जमाने से काफी आगे की सोचते थे और अपनी फिल्म में नए नए प्रयोग करते थे. अपनी फिल्म प्यासा के नाम की तरह अपनी हर फिल्म में कुछ नया करने की उनकी प्यास को देख कर ही लोग उन्हें कहने लगे थे एक था प्यासा.
1: ये इंसान के दुश्मन समाज की दुनिया.
3: कहते हैं हिंदी फिल्मों का गोल्डन एरा यानी सुनहरा दौर गुरुदत्त की फिल्मों के साथ शुरू हुआ. 1950 और 1960 के दशक में गुरुदत्त की फिल्मों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल कर रख दी. प्यासा.
4: मेरी नजर में किसी खोखले सर पर रखी जाए, ये भी उनकी बेइज्जती है.
3: चौधरी का चांद.

0: कागज के फूल और साहेब बीवी और गुलाम ने हिंदी फिल्मों की परिभाषा ही बदल दी।
1: जिन प्रेमियों की प्रेमिकाएं उनके पास तो हैं पर हवा नहीं करती।
2: ठीक कर लीजिए उसे यूं, उनके पास तो है पर परवाह नहीं करती।
1: जी जी।
0: एक शानदार एक्टर, एक बेहतरीन डायरेक्टर और संजीदा इंसान, इसी का नाम है गुरुदत्त।
3: हालत संभल के बाद चला जाओ, अब तो चले जाने के बाद ये हालत संभलेगी गुलाब।
0: गुरुदत्त की फिल्म प्यासा और कागज के फूल को टाइम मैगजीन ने दुनिया भर की 100 बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया है। साल 2010 में सीएनएन ने गुरुदत्त को एशिया के 25 टॉप एक्टर्स में से एक माना। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जिस गुरुदत्त के अभिनय और निर्देशन का दुनिया लोहा मानती है, उन्होंने अपना फिल्मी सफर एक कोरियोग्राफर के तौर पर शुरू किया। सन 1945 में फिल्म हम एक हैं के जरिए गुरुदत्त ने हिंदी फिल्मों में अपना पहला कदम रखा। इसके बाद गुरुदत्त की पहचान तब हुई जब उन्होंने 1951 में सिर्फ 26 साल की उम्र में नवकेतन प्रोडक्शंस की फिल्म बाजी का डायरेक्शन किया।
4: आज की रात पिया दिल ना तोड़ो, मन की बात पिया मान लो।
0: इसके बाद फिल्म आर पार और मिस्टर एंड मिसेस 55 के टपोरी नायक के तौर पर गुरुदत्त की एक्टिंग को खूब सराहा गया।
5: वही तो कर रहा हूँ, बात यह है भाभी इनके पैर में जरा मोच आ गई।
0: लेकिन 19 फरवरी 1957 को रिलीज हुई फिल्म प्यासा ने वाकई गुरुदत्त को फिल्मी दुनिया का गुरु बना दिया।
6: ये मेरी किताब है। जी हाँ जी हाँ, आप ही की किताब है। लेकिन आपका नाम क्या है?
7: मेरा नाम, मैं विजय हूँ।
0: उस वक्त ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि मिस्टर एंड मिसेस का टपोरी फिल्म प्यासा के विजय का किरदार अदा कर सकता है।
3: जिस विजय के नाम पे आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मैं वो विजय नहीं हूँ।
8: प्यासा उनके जीवन में एक सडन चेंज है। प्यासा के बाद एज ए फिल्म मेकर उनका नजरिया बदल गया। अब उनको गंभीर अच्छे किस्म की फिल्म बनाने का शौक आ गया।
0: भारत के अलावा फ्रांस में भी फिल्म प्यासा बेहद हिट रही। कहा जाता है कि फिल्म के गाने जिन्हें नाज है हिंद पर सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत रोए थे।
9: जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है।
0: लेकिन प्यासा के विजय का किरदार उस इंसान के लिए मुश्किल नहीं था जो खुद बचपन में काफी उदास और गुमसुम रहता था। 9 जुलाई 1925 को बैंगलोर में जन्मे गुरुदत्त का बचपन काफी मुश्किलों भरा था। गुरुदत्त को पैसे की कमी से मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बचपन में अपने छोटे भाई की मौत से गुरुदत्त के लिए जिंदगी के शुरुआती अनुभव काफी कड़वे रहे। शुरुआत में गुरुदत्त का नाम बसंत कुमार था, लेकिन बचपन में ही एक एक्सीडेंट के बाद घर वालों ने उनका नाम बदलकर गुरुदत्त रख दिया और शायद इसी बदले हुए नाम ने उनकी जिंदगी भी बदल दी।
10: बचपन में लाइट जाने पर दिए की रोशनी के सामने उंगली की परछाइयों से दीवारों पर आकृति बनाने वाला नन्हा गुरुदत्त अपनी फिल्मों में लाइटिंग के नए नए प्रयोग करने के लिए मशहूर हुआ।
0: फिल्म कागज के फूल का गाना वक्त ने किया क्या हंसी सितम की लाइटिंग ने उस जमाने में सबको चौंका दिया था।

0: फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। प्यासा के दो साल बाद बनी ये फिल्म बहुत हद तक गुरुदत्त की असल जिंदगी की कहानी थी।
1: गुरुदत्त अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी में दो ही चीजें हैं, कामयाबी और नाकामी। इन दोनों के बीच में कहीं भी कुछ भी नहीं। ये बात उन्होंने चौदहवीं के चांद की कामयाबी और कागज के फूल की नाकामी की बात कही।
0: कागज के फूल दर्शकों को पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही।
2: कागज के फूल उसके लाइफ की उसके हिसाब से सबसे बेहतरीन फिल्म है और वो फिल्म नहीं चली। जब भी हमारे यहाँ ये इत्तेफाक की बात है कि कोई महान फिल्मकार अपने जीवन की झलक दिखाने वाली फिल्म बनाता है, वो नहीं चलती।
0: इस फिल्म के बाद गुरुदत्त कभी डायरेक्टर की उस कुर्सी पर नहीं बैठे जिस पर बैठे बैठे फिल्म के हीरो सुरेश सिन्हा की मौत हो।
3: साल 2011 में प्यासा को टाइम मैगजीन ने 10 बेस्ट रोमांटिक फिल्मों में शामिल किया। पर्दे पर वहीदा रहमान और मीना कुमारी के साथ गुरुदत्त की रोमांटिक जोड़ी बहुत हिट थी, लेकिन असल जिंदगी में गुरुदत्त को रोमांस शुरू हुआ फिल्मबाजी से।

बाजी फिल्म के इसी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान दत्त साहब की मुलाकात अभिनेत्री और गायिका गीता रॉय से हुई। गीता उस जमाने में दिलकश आवाज की मलिका थी। रिकॉर्डिंग के सेट पर दोनों की चंद मुलाकातों के बाद तकदीर ने तकदीर की इबारत लिख दी।

0: गुरुदत्त गीता की मखमली आवाज के मुरीद हो गए। बतौर गायिका गुरुदत्त ने गीता रॉय को अपनी फिल्म बाज में भी ब्रेक दिया। गीता रॉय की खनकदार आवाज पर गुरुदत्त दिल दे बैठे। दो साल बाद 1953 में गुरुदत्त ने गीता रॉय से शादी कर ली।
1: शादी के बाद गुरुदत्त और गीता दत्त का शुरुआती सफर काफी उथल पुथल भरा रहा। प्रेम विवाह होने की वजह से दोनों ही परिवार इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन गीतों की ही तरह गीता दत्त ने परिवार को भी खूबसूरती से संवारा।
0: गुरुदत्त ने अपने फिल्मों में गीता की आवाज का इस्तेमाल किया, लेकिन शादी के बाद गीता पर दूसरे बैनर तले गाने पर पाबंदी लगा दी। हालात ये थे कि चोरी छिपे गीता अपने गानों की रिकॉर्डिंग के लिए जाती, दौड़ते भागते शाम से पहले घर पहुंच जाती ताकि गुरुदत्त को पता न चल सके।
2: उन्होंने प्रेम विवाह गीता दत्त से किया था, लेकिन शादी के बाद उनके और गीता दत्त के बीच में कई बार झगड़े भी हुए, जो अक्सर पति पत्नियों के बीच में होते हैं।
0: गुरुदत्त को अकेलापन पसंद था। वो अपनी फिल्मों को बनाने में इतने डूब जाते थे कि उन्हें अपने परिवार को वक्त देने में भी दिक्कत होती। वहीं गीता को सबके साथ मिलने जुलने में ज्यादा खुशी मिलती। शादी के चार साल बीतते बीतते गीता की जिंदगी में एक नई उलझन की एंट्री हुई। 19 फरवरी 1957 फिल्म प्यासा रिलीज हुई। फिल्म में गुरुदत्त हीरो थे और हीरोइन थी वहीदा रहमान। इस फिल्म के सेट पर गुरुदत्त ने वहीदा की आंखों में अपना दिल बसा दिया।
3: इस दिल को बसा दे तो।
0: प्यासा से शुरू हुई गुरुदत्त वहीदा रहमान की मोहब्बत लोगों ने चौदहवीं का चांद में भी महसूस की।
4: जो भी हो तुम खुदा की कसम।
0: इस मोहब्बत को मीडिया ने खूब उछाला। फिल्म कागज के फूल से इनकी कहानी पर्दे से होकर दर्शकों की आंखों में उतर गई। इस फिल्म की स्क्रिप्ट गुरुदत्त की निजी जिंदगी की कहानी थी।

प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। अतः किसी भी कार्य से पहले इनकी वंदना और आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सच्चे दिल से इनकी वंदना करते हैं, उनकी जिंदगी हर विघ्न बाधाओं से मुक्त एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। अतः हम सबों को इनकी वंदना सच्चे दिल से करनी चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इनकी वंदना करते हैं।

0: खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है।
1: वाह वाह बेटा,
0: सुबह की किरने आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी,
1: नमस्ते।
0: जय हिंद जय हिंद ओ पिताजी,
1: जय हिंद।
0: नमस्ते नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

0: हमराज कार्यक्रमाच्या श्रोत्यांना नमस्कार. सुरू करूया आजची मैफिल. संवेदनांच्या जगाचा साक्षीदार गुरुदत्त यांच्या माहितीवर आधारित मजकुराचा पहिला भाग सादर आहे. अपेक्षांच्या ओझ्यामुळे गुरुदत्त यांच्या भावनांनी 1964 साली आत्मघातकी रूप घेतलं आणि एक हळुवार जीवन अचानक थांबलं हे सत्य आपल्याला माहीतच आहे. ऐकूया एक था प्यासा गुरुदत्त भाग एक.
1: वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला.
2: गुरुदत्त हिंदी फिल्मों के पहले मिस्टर परफेक्शनिस्ट, लाजवाब एक्टर, उससे भी बेहतरीन डायरेक्टर गुरुदत्त वाकई बॉलीवुड के गुरु थे. गुरुदत्त अपने जमाने से काफी आगे की सोचते थे और अपनी फिल्म में नए नए प्रयोग करते थे. अपनी फिल्म प्यासा के नाम की तरह अपनी हर फिल्म में कुछ नया करने की उनकी प्यास को देख कर ही लोग उन्हें कहने लगे थे एक था प्यासा.
1: ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया.
3: कहते हैं हिंदी फिल्मों का गोल्डन एरा यानी सुनहरा दौर गुरुदत्त की फिल्मों के साथ शुरू हुआ. 1950 और 1960 के दशक में गुरुदत्त की फिल्मों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल कर रख दी. प्यासा.
4: मेरी नजमें किसी खोखले सर पर रखी जाए ये भी उनकी बेइज्जती है.
3: चौधरी का चांद.

0: कागज के फूल और साहेब बीवी और गुलाम ने हिंदी फिल्मों की परिभाषा ही बदल दी।
1: जिन प्रेमियों की प्रेमिकाएं उनके पास तो हैं पर हवा नहीं करती।
2: ठीक कर लीजिए उसे, यूं उनके पास तो है पर परवाह नहीं करती।
1: जी जी।
0: एक शानदार एक्टर, एक बेहतरीन डायरेक्टर और संजीदा इंसान, इसी का नाम है गुरुदत्त।
3: हालत संभलने के बाद चला जो, अब तो चले जाने के बाद ये हालत संभलेगी गुलाब।
0: गुरुदत्त की फिल्म प्यासा और कागज के फूल को टाइम मैगजीन ने दुनिया भर की 100 बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया है। साल 2010 में सीएनएन ने गुरुदत्त को एशिया के 25 टॉप एक्टर्स में से एक माना। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जिस गुरुदत्त के अभिनय और निर्देशन का दुनिया लोहा मानती है, उन्होंने अपना फिल्मी सफर एक कोरियोग्राफर के तौर पर शुरू किया। सन 1945 में फिल्म हम एक हैं के जरिए गुरुदत्त ने हिंदी फिल्मों में अपना पहला कदम रखा। इसके बाद गुरुदत्त की पहचान तब हुई जब उन्होंने 1951 में सिर्फ 26 साल की उम्र में नवकेतन प्रोडक्शंस की फिल्म बाजी का डायरेक्शन किया।
4: आज की रात पिया दिल न तोड़ो, मन की बात पिया मान लो।
0: इसके बाद फिल्म आर पार और मिस्टर एंड मिसेस 55 के टपोरी नायक के तौर पर गुरुदत्त की एक्टिंग को खूब सराहा गया।
5: वही तो कर रहा हूँ, बात यह है भाभी इनके पैर में जरा मोच आ गई।
0: लेकिन 19 फरवरी 1957 को रिलीज हुई फिल्म प्यासा ने वाकई गुरुदत्त को फिल्मी दुनिया का गुरु बना दिया।
6: ये मेरी किताब है। जी हाँ जी हाँ, आप ही की किताब है। लेकिन आपका नाम क्या है?
7: मेरा नाम, मैं विजय हूँ।
0: उस वक्त ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि मिस्टर एंड मिसेस का टपोरी फिल्म प्यासा के विजय का किरदार अदा कर सकता है।
3: जिस विजय के नाम पे आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मैं वो विजय नहीं हूँ।
8: प्यासा उनके जीवन में एक सडन चेंज है। प्यासा के बाद एज ए फिल्म मेकर उनका नजरिया बदल गया। अब उनको गंभीर अच्छे किस्म की फिल्म बनाने का शौक आ गया।
0: भारत के अलावा फ्रांस में भी फिल्म प्यासा बेहद हिट रही। कहा जाता है कि फिल्म के गाने जिन्हें नाज है हिंद पर सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत रोए थे।
9: जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है।
0: लेकिन प्यासा के विजय का किरदार उस इंसान के लिए मुश्किल नहीं था जो खुद बचपन में काफी उदास और गुमसुम रहता था। 9 जुलाई 1925 को बैंगलोर में जन्मे गुरुदत्त का बचपन काफी मुश्किलों भरा था। गुरुदत्त को पैसे की कमी से मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बचपन में अपने छोटे भाई की मौत से गुरुदत्त के लिए जिंदगी के शुरुआती अनुभव काफी कड़वे रहे। शुरुआत में गुरुदत्त का नाम बसंत कुमार था, लेकिन बचपन में ही एक एक्सीडेंट के बाद घर वालों ने उनका नाम बदलकर गुरुदत्त रख दिया और शायद इसी बदले हुए नाम ने उनकी जिंदगी भी बदल दी।
10: बचपन में लाइट जाने पर दिए की रोशनी के सामने उंगली की परछाइयों से दीवारों पर आकृति बनाने वाला नन्हा गुरुदत्त अपनी फिल्मों में लाइटिंग के नए नए प्रयोग करने के लिए मशहूर हुआ।
0: फिल्म कागज के फूल का गाना वक्त ने किया क्या हंसी सितम की लाइटिंग ने उस जमाने में सबको चौंका दिया था।

0: फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। प्यासा के दो साल बाद बनी ये फिल्म बहुत हद तक गुरुदत्त की असल जिंदगी की कहानी थी।
1: गुरुदत्त अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी में दो ही चीजें हैं, कामयाबी और नाकामी। इन दोनों के बीच में कहीं भी कुछ भी नहीं। ये बात उन्होंने चौदहवीं के चांद की कामयाबी और कागज के फूल की नाकामी की बात कही।
0: कागज के फूल दर्शकों को पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही।
2: कागज के फूल उसके लाइफ की उसके हिसाब से सबसे बेहतरीन फिल्म है और वो फिल्म नहीं चली। जब भी हमारे यहाँ ये इत्तेफाक की बात है कि कोई महान फिल्मकार अपने जीवन की झलक दिखाने वाली फिल्म बनाता है, वो नहीं चलती।
0: इस फिल्म के बाद गुरुदत्त कभी डायरेक्टर की उस कुर्सी पर नहीं बैठे जिस पर बैठे बैठे फिल्म के हीरो सुरेश सिन्हा की मौत हो।
3: साल 2011 में प्यासा को टाइम मैगजीन ने 10 बेस्ट रोमांटिक फिल्मों में शामिल किया। पर्दे पर वहीदा रहमान और मीना कुमारी के साथ गुरुदत्त की रोमांटिक जोड़ी बहुत हिट थी, लेकिन असल जिंदगी में गुरुदत्त को रोमांस शुरू हुआ फिल्मबाजी से।

बाजी फिल्म के इसी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान दत्त साहब की मुलाकात अभिनेत्री और गायिका गीता रॉय से हुई। गीता उस जमाने में दिलकश आवाज की मलिका थी। रिकॉर्डिंग के सेट पर दोनों की चंद मुलाकातों के बाद तकदीर ने तकदीर की इबारत लिख दी।

0: गुरुदत्त गीता की मखमली आवाज के मुरीद हो गए। बतौर गायिका गुरुदत्त ने गीता रॉय को अपनी फिल्म बाज में भी ब्रेक दिया। गीता रॉय की खनकदार आवाज पर गुरुदत्त दिल दे बैठे। दो साल बाद 1953 में गुरुदत्त ने गीता रॉय से शादी कर ली।
1: शादी के बाद गुरुदत्त और गीता दत्त का शुरुआती सफर काफी उथल पुथल भरा रहा। प्रेम विवाह होने की वजह से दोनों ही परिवार इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन गीतों की ही तरह गीता दत्त ने परिवार को भी खूबसूरती से संवारा।
0: गुरुदत्त ने अपने फिल्मों में गीता की आवाज का इस्तेमाल किया, लेकिन शादी के बाद गीता पर दूसरे बैनर तले गाने पर पाबंदी लगा दी। हालात ये थे कि चोरी छिपे गीता अपने गानों की रिकॉर्डिंग के लिए जाती, दौड़ते भागते शाम से पहले घर पहुंच जाती ताकि गुरुदत्त को पता न चल सके।
2: उन्होंने प्रेम विवाह गीता दत्त से किया था, लेकिन शादी के बाद उनके और गीता दत्त के बीच में कई बार झगड़े भी हुए, जो अक्सर पति पत्नियों के बीच में होते हैं।
0: गुरुदत्त को अकेलापन पसंद था। वो अपनी फिल्मों को बनाने में इतने डूब जाते थे कि उन्हें अपने परिवार को वक्त देने में भी दिक्कत होती। वहीं गीता को सबके साथ मिलने जुलने में ज्यादा खुशी मिलती। शादी के चार साल बीतते बीतते गीता की जिंदगी में एक नई उलझन की एंट्री हुई। 19 फरवरी 1957 फिल्म प्यासा रिलीज हुई। फिल्म में गुरुदत्त हीरो थे और हीरोइन थी बहीदा रहमान। इस फिल्म के सेट पर गुरुदत्त ने वहीदा की आंखों में अपना दिल बसा दिया। प्यासा से शुरू हुई गुरुदत्त वहीदा रहमान की मोहब्बत लोगों ने 14वीं का चांद में भी महसूस की।
3: जो भी हो तुम खुदा की कसम।
0: इस मोहब्बत को मीडिया ने खूब उछाला। फिल्म कागज के फूल से इनकी कहानी पर्दे से होकर दर्शकों की आंखों में उतर गई। इस फिल्म की स्क्रिप्ट गुरुदत्त की निजी जिंदगी की कहानी थी।

0: वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: दादू? वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।